अलका याग्निक और कुमार सानू को भी आपने सुना फिल्म साजन का घर में। गीतकार थे समीर, संगीत था नदीम श्रवण का। श्रोताओं आपको याद दिला दें, आज शाम 5:10 से आप सुनेंगे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में रोजगार मेला 2026 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5:10 से कार्यक्रम के समापन तक।

0: और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 5 बजे हैं। समाचार मुख्यांश आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में हमारे रांची केंद्र से।
1: शाम के 5 बजने वाले हैं, आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में 30 जून से SIR कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसके तहत PLO घर घर जाकर मतदाताओं को चिन्हित करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इसके सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों और अन्य चुनाव अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण शुरू हो गया है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में आज रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शाम 5 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में योजना के क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों पर चर्चा की जाएगी। भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। लोहरदगा के राजेंद्र भवन में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नेताओं ने केक काटकर उनके दीर्घायु होने की

0: करेगी। देवघर के सदर अस्पताल में आज विश्व सिकल सेल दिवस पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज गुप्ता और उपाधीक्षक डॉक्टर सुषमा वर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार मुख्यांश हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सभी युवा दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के समय में युवाओं के सामने करियर के कई अवसर उपलब्ध है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, शिक्षा, व्यवसाय, खेल, कला और डिजिटल क्षेत्र में नई नई संभावनाएं विकसित हो रही हैं। इंटरनेट और तकनीकी प्रगति के रोजगार के पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग और स्टार्टअप जैसे नए विकल्प भी प्रदान किए हैं। हालांकि बढ़ती स्पर्धाओं के कारण केवल डिग्री प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, युवाओं को अपने कौशल, ज्ञान, संचार क्षमता और तकनीकी दक्षता को निरंतर विकसित करना चाहिए। सही मार्गदर्शन, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज की परिस्थिति में सफल करियर का आधार केवल शिक्षा नहीं बल्कि रचनात्मकता, आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा भी है। जो युवा समय के साथ स्वयं को अपडेट रखते हैं, उनके लिए सफलता के अनेक द्वार खुले रहते हैं।

उरी फिल्म का गीत अभी आपने सुना शांतनु सुदामे और शाश्वत सचदेव की आवाजों में। गीत का थी अभिरुचि चंद, संगीत था शाश्वत सचदेव का। और इसी के साथ युवाणी कार्यक्रम से मुझे अनुमति

0: ये था युवाओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5:10 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 19 जून 2026 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में रोजगार मेला 2026 का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में।
1: आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना कार्यक्रम का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं प्रीति मोहन और डी एंड्रियो। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: नमस्कार, विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। मेरे साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू मेरे साथ हैं और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
3: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he is having a talk, a discussion.

0: With the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs. And it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
1: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी. बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना.
0: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
1: बिल्कुल. और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगी श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे.
0: या दिस टू बेनिफिशियरीज आर गोइंग टू ब्रिंग द प्राइम मिनिस्टर टू द डेस्क. व्हाट अ प्रिविलेज फॉर देम. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर देम. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू द मोटो फॉर दिस इज रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार. व्हाट अ एनकरेजमेंट टू द पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस. एंड देन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इज फ्रॉम ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम्स up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all, that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through forgetting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नज़र डालें तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है, और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी, और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें, उस पर एक नजर डालें, तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई, और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है, और आगामी 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हो. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है, और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे। ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो
0: people will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay,

0: I'm not going to achieve anything. But let the, this Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? Rozgar ya karobar, saath hai Bharat Sarkar.
1: और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है आसानी से सब पहुंच सके और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure, split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees, jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization, registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000.
1: Mm-hmm.
0: Right?
1: Mm-hmm.
0: And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees. And the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even the so that more and more people get employment, and they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल सभी को फायदा है बिल्कुल फायदा है और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा और वही सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है
0: The Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today, across India through the National Career Service portal, that is the National Career Service India, to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs. It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you are reasonable, you are well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुँच गए हैं तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं नहीं आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का कुछ बेहतर करने का इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी 4 श्रम संहिताएं लागू महिला कर्मचारियों के लिए लाभ नारी शक्ति समान कार्य के लिए समान वेतन सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान

0: निर्माण और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति। विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
1: And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the prime ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025. It started last year till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years. Hmm. But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years.
0: Hmm.
1: Benefits are applicable up to a period of 4 years.
0: 4 saal.
1: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
0: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं, और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये।
1: बिल्कुल, to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
0: और आकाशवाणी के माध्यम से आपको देखा हाल आप तक पहुंच रहा है, और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो।
1: Yes, and our Prime Minister has always put a lot of stress on the youth, you know, the youth of this country, because they are the future pillars. They are the ones who are going to hold this nation. So he is putting a lot of stress on them, and he sees that all are employed, all get employment. None of them are left without a job, because you know how much frustration it leads to when a person doesn't have a job. So that's why the Prime Minister is working on this and is bringing out these schemes, and then. I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is being maintained. And the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive. He's on his way. And I want to tell you one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
0: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना?
1: Yeah.
0: लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ है।
1: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got the employment letter, the job letters, and the total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
0: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रू तो जरूर बताना चाहेंगे, योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि 2 किस्तों में मिलेगी, और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है।
1: Yes.
0: ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है। और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे। इसका आपने जिक्र भी किया था, है
1: ना? एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, and they are paid something for every time they give a taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to

0: So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा ये बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights and he has achieved it almost. He's taken India to great heights and right now and of course internationally the world India has got recognition as a mediator among warring countries because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: चार श्रम संहिताएं लागू मजदूरी संहिता 2019 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020 29 श्रम कानूनों का एकीकरण सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम पारदर्शी कुशल और डिजिटल प्रणाली और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन यू नो द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रीति इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस यू नो जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people beneficiaries get the employment letter India has also gone ahead with the world when we have advanced they have gone digital and we have gone digital so we are going digital in every field so we should be proud of our country and the people are anxiously waiting over here there are about 700 people I think almost 700 people are seated over here right up to the top
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है
0: इट्स फुल नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी पीपल आर दे ऑल सी दे आर ऑल जॉब सीकर्स एंड मोस्ट ऑफ दीस पीपल दे विल बी गेटिंग द जॉब्स दे ऑल कीपिंग देयर फोन्स रेडी ऑन द टेबल सो एज सून एज द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसेस द बटन इट विल कम टू देयर फोन दैट दे हैव गॉट देयर लेटर
1: An amount will be transferred.
0: Yeah.
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees while larger firms 50 or more baseline workers must add at least 5 new employees and the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold provided they are retained for at least 6 months and the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors however to heavily support the manufacturing sector Businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is the payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number UAN utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए और ये बहुत महत्वपूर्ण है जी. इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे और उनके साथ उनको स्कॉर्ट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: And see, the beauty is that the person who'll be giving the bouquet is one of the young beneficiaries, and he'll be so happy in his heart that I'm getting a job, and our Prime Minister has given this job to me. So, and I'm telling you, it's really going to change the lives of these people, all these beneficiaries who are sitting over here in the plenary hall of Vigyan Bhavan, and they'll be dreaming, you know. I'm sure I'm going to come up. And I think they're all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be... There'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button. Which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means he wants to build India into one of the superpowers in the world. Bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India a strong economic power, and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: And see the dais, how many bouquets are there? The Prime Minister will be sitting right in the middle. On the right, he'll be flanked by the Union Minister, and on the left, by the Minister of State. And the board behind, you know, it's a beautiful one. There's a screen on the board. On the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and

0: जब हम परीक्षा देखकर पास करते हैं, हमारा रिजल्ट आता है, एंड्रू, तो सबसे पहले मन में एक ही भाव आता है ना कि अच्छा अब हमें नौकरी कहाँ मिलेगी। और जब आपकी नौकरियाँ बिल्कुल आपके सामने ही होती हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर हो गई, कोई समस्या ही नहीं है अब आपके पास, और वो भी इतनी आसानी से आपको सब कुछ मिल गया। नहीं
1: yes.
0: तो अब यहाँ पर एक बार पुनः बताना चाहूँगी, रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
1: जी। So, in fact, the person right in front of us, you know, there are deaf and dumb people also over here, and there's one person
0: translate किया
1: yeah, he's translating through action. It's really interesting to see him, you know, the way he's doing the music, everything, and his say, and when the words, you know, when the words come, he's translating it through his actions, you know, and it's really very interesting, you know, and just see the people over here. You can see the people, they're all seated, waiting anxiously for the letters to come on their mobile. In fact, most of them have got it, but still, it will be confirmed after the Prime Minister presses the button, the magic button today.
0: Mm.
1: Yeah.
0: उसके बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
1: yes.
0: जब रिमोट का बटन प्रेस होगा तो राशि हस्तांतरित हो जाएगी। बस इंतजार तो कुछ ही पलों का है, ज्यादा नहीं। और युवा लाभार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत चल रही है, और उनके लिए ये बहुत ही अनोखे क्षण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, और इन ऐतिहासिक क्षणों को वो समेट कर रखेंगे हमेशा। और ऐसे लगता है ना कि ये क्षण बस रुक जाए और बातचीत चलती रहे, बातचीत खत्म ना हो। नहीं,
1: yeah, I think everything has stopped, they are all in attention, and I think the Prime Minister is arriving with the other dignitaries. He'll be taking his seat on the dais, and once he comes in, the program will begin. He'll be felicitated with a bouquet by one of the beneficiaries. That will be a privilege for the beneficiary, no? The student, young student, will be coming and giving the bouquet to the Prime Minister. And the Prime Minister, I think, has arrived, he has entered, and is walking in the most smartest way, our Prime Minister.
2: Duniya ke sabse lokpriya neta, mananiya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji ka.
3: Ek baar zordaar
2: taaliyan ho jaye. Deviyon aur sajjano, taaliyon ki gadgadahat rukni nahi chahiye.
3: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
2: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
3: मैं मन्नत भाटिया
2: और मैं जयवर्धन गोयल,
3: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का
1: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais.
3: माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
1: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
0: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
2: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री सिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
0: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
2: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है, और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
3: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविय जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
1: And now the welcome remarks by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat प्रोत्साहन राशि वितरण करने के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदलाजे जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था, और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी, उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी दी है। महिला वर्कर्स के हित के लिए एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयर को 1 साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है। जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉइज को वर्ष में 1 बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था। लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट हुए थे और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने

0: 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए। मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा। उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करे तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है। उसका फलस्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2,400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर, कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button and you can see the people cheering.
8: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
3: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15,00,000 लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
2: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
3: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
3: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
9: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा भी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2,00,000 लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से

युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती है, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है और कभी बड़े होने की संभावना, उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है और इस योजना से वो द्वार भी खुला है। और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं

इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। यह उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है, एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत
कितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही है, जो निर्णय लिए गए हैं, उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी हैं। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था, उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है। और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है, लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया, उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो,
प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी, वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप, और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है, और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है, हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है, पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है, लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा,

और अधिक अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो, या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है, इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो, या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित है। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा, हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे, हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है। दोस्तों, साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं, जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी, शिक्षा की क्वालिटी।

0: स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी, दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खुलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं, एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होके रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है, और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dream is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रयू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में रोजगार मेला 2026 का आयोजन। इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम कृषि जगत के सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार। मित्रों, हम उपस्थित हैं आप सबों के लिए लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम। रोज की ही भांति आज भी हम अपने कार्यक्रम में संजो कर लाए हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की चर्चा से।

किसान भाइयों, भारत सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए देश के किसानों को बिचौलियों और महाजनों के ऋण से बचाने के लिए उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया है, जो किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन के लिए सस्ती और आसान ऋण की सुविधा प्रदान करता है। किसान भाई इससे सस्ता लोन ले सकते हैं। उन्हें केसीसी पर सामान्य दर 7% वार्षिक की दर से लोन मिल जाता है, लेकिन यदि आप समय पर ऋण चुका देते हैं तो सरकार उन्हें अपनी तरफ से 3% की और छूट प्रोत्साहन के रूप में दे देती है, जिससे कि प्रभावी ब्याज दर महज 4% वार्षिक रह जाती है। किसान भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड से बिना किसी गारंटी के, बिना कोई जमीन या संपत्ति गिरवी रखे, आप 1,60,000 रुपए से 3,00,000 रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। अगर आप इस कार्ड से कृषि और इससे जुड़े अन्य कार्यों जैसे डेयरी, मछली पालन आदि करते हैं तो इसके लिए भी आपको 5,00,000 रुपए तक का लोन तुरंत मिल सकता है। भारत सरकार ने इस कार्ड को अपडेट करते हुए अब रुपए या एटीएम कार्ड की तरह भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, जिससे जरूरत पड़ने पर आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात, केसीसी कार्ड धारक किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का लाभ भी दिया जा रहा है, जिसमें मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 50,000 और दुर्घटनाओं में 25,000 रुपए तक कवर मिलता है। इस कार्ड धारक किसान को अपनी फसल बिकने पर लोन का भुगतान करने की छूट दी गई है। इस कार्ड की वैधता 5 वर्ष होती है, जिसमें हर साल नवीनीकरण की सुविधा दी गई है। किसान भाइयों, आप इस कार्ड के बारे में जन समर्थ पोर्टल या SBI के सी माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कार्ड के लिए अभियान आप आवेदन कर सकते हैं। और अब कुछ बातें खेत बचाओ अभियान की। किसान भाइयों, 1 जून 2026 से 30 जून 2026 तक देश भर में भारत सरकार द्वारा खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार और कृषि ऋण मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला ये एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम है। इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बचाना, रासायनिक खादों का सही और संतुलित उपयोग करना तथा किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करना है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से खेतों की उपजाऊ क्षमता घट रही है। ये अभियान मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा देता है ताकि जरूरत के मुताबिक ही आप खाद डाल सकें। किसानों को अपनी जमीन के कम से कम चौथाई हिस्से में जैविक खाद, हरी खाद और प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लिए भी ये अभियान प्रेरित कर रहा है। इसके तहत किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सही इस्तेमाल, किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा योजनाओं के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। किसान भाइयों, कृषि को टिकाऊ बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि योग्य भूमि को सुरक्षित रखने के मकसद से ये अभियान काफी अहम माना जा रहा है।

किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, बरसाती सब्जियों की बुआई मुख्य रूप से जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक की जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खेतों में जल भराव ना हो, इसलिए हमेशा उठी हुई क्यारियों का उपयोग करें ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल जाए। किसान भाइयों, बरसात में बेल वाली सब्जियां अधिक लगाई जाती है, जिनमें लौकी, तोरी, करेला, खीरा, कद्दू और चिचिंडा। इसके अलावा झाड़ीदार सब्जियां भी लगाई जाती है, जिनमें भिंडी, बैंगन, टमाटर और मिर्च, जबकि पत्तेदार सब्जियों में बरसाती फूलगोभी, मूली और पालक शामिल हैं। किसान भाइयों, आप बेल वाली सब्जियों को जमीन पर फैलाने के बजाय बांस और तारों का मचान बनाकर उसके ऊपर डाल दें। इससे फल जमीन पर सड़ते नहीं हैं और पैदावार अच्छी होती है। वहीं मेड़ विधि बरसाती खेतों के लिए सबसे अधिक सफल विधि है। इसमें जमीन से 1.5 से 2 फीट ऊंचे बेड की क्यारी बनाएं और उन पर बीजों या पौधों की रोपाई कर दें। खेत के चारों ओर नालियां बनाएं ताकि भारी बारिश होने पर अतिरिक्त पानी खेत से बाहर निकल सके और पेड़ों में सड़न ना होने पाए। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप बरसाती सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और अब ये सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है रासायनिक उर्वरकों के बजाय वर्मी कंपोस्ट का उपयोग फायदेमंद। इस विषय में जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला की जूनियर साइंटिस्ट सस्य विभाग कुमारी सिमरन। आइए इनसे बातें करते हैं।

0: किसान भाइयों,
1: कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला खरसावां के प्रांगण में हमारी बातचीत हो रही है। इस केंद्र की कनीय वैज्ञानिक जो सस्य विभाग से जुड़ी हुई हैं, ये जूनियर साइंटिस्ट हैं, कुमारी सिमरन। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट या केचुआ खाद वो कितना लाभकारी होता है और वो इसको कैसे तैयार कर सकते हैं और इसका उपयोग कैसे करेंगे, कैसे ये लाभ देगा आपको और आप कैसे रासायनिक खाद से छुटकारा पाएंगे। तो सबसे पहले सिमरन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जोहार।
1: हाँ, तो आप बताएं कि किस प्रकार हमारे किसान भाई वर्मी कंपोस्ट की ओर मुखातिब होंगे।
2: वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ खाद, ये एक तरह का बहुत ही जैविक खाद है। आप जो रासायनिक खाद यूज़ करते हैं उससे हम देखते हैं कि हमारा खेत इस तरीके से बिगड़ रहा है कि हम अच्छे से उसमें उपजाऊ नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिटी ख़राब होते जाती है हमारी उपज की। तो हम अगर चाहें अपनी उपज को अच्छे से बनाना और बढ़ाना तो हम केचुए खाद की तरफ जा सकते हैं। और ये इसे बनाना बहुत ही आसान है, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर में ही बना सकते हैं और जो बच जाएगा उसे आप बेच भी सकते हैं, तो एक तरह से दुगनी इनकम भी हो जाएगी आपकी। और केचुआ खाद यानी कि केचुआ, जो हम जानते हैं कि केचुओं के इस्तेमाल से इसके खाद बनाए जाएंगे, तो इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि कचरा, जो कि हमारे घर में ही कचरा रहता है, खाने से बचा कचरा, सब्जियां काट रहे उससे बचा कचरा, और दूसरा गोबर। आप कहीं से 15 से 20 दिन पुराना गोबर ले आइए और साथ में सूखी पत्तियाँ। अब पत्तियाँ तो कहीं भी मिल जाएंगी, आप देखते हैं रोड पर गिरा रहता है, और हम खुद भी अगर गार्डन वगैरह है तो वहाँ पर पत्तियाँ मिल जाती हैं। और केचुआ हम आपको केवीके से प्रोवाइड करवा देंगे, आप यहाँ आके केचुआ यहाँ से ले जा सकते हैं ताकि आप अपना खाद बना सकें। अब इसे बनाने के लिए बहुत ही छोटे जगह पर ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे धूप ना आए, मतलब कि धूप छाँव हो, मतलब रोशनी आ सकती है पर धूप डायरेक्ट ना पड़े वहाँ पे,
1: छायादार जगह हो।
2: तो आप क्या कीजिए, पहले भूसी या फिर कुछ बिछा दीजिए, उसके ऊपर सूखी पत्ती, जो हमने कचरा लिया था, खाने से बचा हुआ कचरा, पुराना कचरा, खाना और सब्जियों का बचा हुआ कटा हुआ आलू के छिलके, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ऊपर केचुआ डाल के इसे छोड़ दीजिए और आप देखिएगा कि 45 दिनों बाद आपको खाद मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल आप किसी चीज़ में भी कर सकते हैं, आप खेतों में कर सकते हैं, अपने गार्डन में कर सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में कर सकते हैं, और आप खुद ही देखिएगा कि कुछ दिनों में आपको उपज बढ़ रहा है। अगर आप फूल लगा रहे हैं तो फूल ज़्यादा आ रहा है आपके गमलों में, खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका उपज बढ़ रहा है और खर्चा बिल्कुल भी नहीं है। गोबर आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है और कचरा तो आपके किचन से ही आ रहा है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, ये सवाल उठते हैं हर किसी के अंदर। तो आप जैसे कि 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसमें 20 से 30 ml लिक्विड निकलता है, इससे आप उसको मिला के आप छिड़काव कर दें पूरे के पूरे खेत में या फिर गमले में। तो आपको बस इस तरह से करना है। अब आपका सवाल एक हो सकता है कि आखिर क्यों करें हम, मतलब कि क्यों केचुआ खाद यूज़ करें, रासायनिक खाद तो हम डाल रहे हैं, उपज भी अच्छी आ जाती है, हमें ऐसा लग रहा है कि आज उपज अच्छी आ रही, पर आपने देखा होगा कि 3-4 साल बाद आपको उपज कम होते जा रहा, खाद आपको रासायनिक खाद ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर हम केचुआ खाद की तरफ जाएं तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि केचुआ खाद से एक तो आपका उपज बढ़ेगा, दूसरा है कि जो बीमारियां हो रही हैं, कीड़े मकौड़े आ रहे हैं, वो भी कम आएंगे। और कभी कभी आपने देखा कि हमारी मिट्टी सख्त हो जाती है और पानी हम जो डालते हैं ऊपर में भर जाता है, मतलब कि पानी नीचे जा नहीं पा रही है जड़ों तक। तो इससे भी आप बच जाइएगा कि ज़मीन को ये मुलायम कर देता है और पानी अच्छे से पहुँच पाती है जड़ों तक, तो उपज बढ़ेगी। और दूसरा कि आप देखिएगा तो पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हमें मिल जाती है और इस चीज़ को हमें अलग अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि क्यों डालना चाहिए, अब इतना तो आपने कर लिया। अब मान लीजिए कि आपके खेत नहीं है, फिर भी आप इसे बना सकते हैं, आप इसे बेच सकते हैं उनके पास जिनके पास खेत है, जिन जो गमलों में फूल लगाते हैं, आप देखते हो कि हमारे आसपास ही बेच सकते हैं आप, तो एक तरह से ये भी आपके लिए एक इनकम का स्रोत हो सकता है।
1: किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी जानकारी कुमारी सिमरन हमें दे रही हैं। आप जैसा जानते हैं कि अब तक आप रासायनिक खाद के माध्यम से अपने खेतों में उपज बढ़ा रहे थे या उपज ले रहे थे, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपकी ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है, आपको हर 2-3 साल के बाद मिट्टी पलटना पड़ रहा होगा, और जो आप उपज ले रहे हैं रासायनिक खादों से, उसके भी सेवन करने से लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, भले ही दिखता ना हो लेकिन बाद में होता है। लेकिन वहीं इन्होंने जो बताया कि किस तरह बर्मी कंपोस्ट और केचुआ खाद का प्रयोग आप अगर करेंगे तो इन सारे साइड इफेक्ट से आप बचेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। सिमरन जी, और कुछ आपके मन में हो तो आप हमारे किसान भाइयों को बताएं।
2: जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि केचुआ खाद हमारे खेतों के लिए, गमलों के लिए बहुत अच्छा है, तो अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हम इसे करें कैसे, कभी आपने किया नहीं होगा। मैंने भी पहली बार जब मैं कर रही थी तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि कैसे करना कैसे नहीं करना, पर जब मैंने सीखा मुझे बहुत ही आसान लगा। तो जो भाई बहन ये सीखना चाहते हैं कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट बना सके, वो हमारे केवीके में आकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और हम उन्हें ट्रेनिंग दिलवाते हैं, और इनफैक्ट हम उन्हें केचुआ भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो खुद का अपना वर्मी कंपोस्ट या फिर केचुआ खाद बना सके। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी सिमरन जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी वर्मी कंपोस्ट के बारे में। हम समझते हैं हमारे किसान भाई इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे और आपके बताए हुए विधि को अपना करके अपने खेतों में भी प्रयोग करेंगे, और अगर वो चाहें तो इसे व्यावसायिक तौर पे तैयार करके किसानों को भी आप सस्ते दरों में बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत बहुत ही कम है। और इससे क्या होगा कि हमारा समाज स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा। सिमरन जी, आपके इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

रासायनिक उर्वरकों के बजाय वर्मी कंपोस्ट का उपयोग फायदेमंद। अभी आपने ये भेंटवार्ता सुना। भेंटवार्ताकार थे कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला की जूनियर साइंटिस्ट कुमारी सिमरन। और अब आइए सुनते हैं एक भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं वीरेंद्र कुमार तिवारी।

भाई वीरेंद्र तिवारी से आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत। और अब आइए चलते चलते कार्यक्रम में कुछ बातें कृषि जगत की करते हैं। किसान भाइयों, पशुओं के स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन को बेहतर बनाए रखने के लिए हरा चारा एक अत्यंत आवश्यक और पौष्टिक आहार है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन्स और फास्फोरस की मात्रा होती है, जिससे पशुओं की पाचन क्रिया सही रहती है। किसान भाइयों, हरे चारे को आप कई तरह से बो सकते हैं, जिसमें छिटकवा विधि, पंक्तिबद्ध या लाइन विधि, रूट स्लिप या कटिंग लगाना, इसके साथ ही हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से भी आप हरे चारे की बुआई कर सकते हैं। इस समय हरे चारे की खरीफ फसलें जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार और लोबिया की बुआई आप कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम के अंत में कुछ बातें झारखंड में पाई जाने वाली मछलियों के बारे में। किसान भाइयों, झारखंड में दो श्रेणियों के मछलियां पाई जाती हैं। पहली हैं देशी और स्थानीय मछलियां, जिनमें देशी मांगुर, सिंधी, कवई, सोल आदि शामिल हैं, जबकि दूसरी श्रेणी है व्यावसायिक मछलियों की, जिनमें कार्प मछलियां जैसे रोहू, कतला और मृगल, जबकि विदेशी कार्प में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प शामिल हैं। किसान भाइयों, मत्स्य पालन झारखंड के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक बेहतर साधन है। यहाँ केज कल्चर और बायोफ्लॉक जैसे कई तकनीकों से कम लागत में सालाना लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसके साथ ही आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में। सभी श्रोता मित्रों को रेडियो दोस्त संजीव का जोहार।

कृषि जगत, ये था ग्रामीण श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय शाम के 6:55 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि, संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम से पहले कुछ युवाओं से बातचीत भी की। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना उद्योग और युवाओं के बीच एक मजबूत सेतु है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने

0: केंद्रीय आवासन शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज रांची में शहरी विकास और विद्युत योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के छूटे हुए 20,000 घरों में बिजली पहुँचाना केंद्र की प्राथमिकता है।
1: कंज्यूमर्स को लेकर के एक स्मार्ट मीटर और साथ में जो गवर्नमेंट के हमारे जितने कनेक्शन हैं, पहले चरण में प्रीपेड मीटर ये करने का जो विचार है इसको जल्दी पूरा किया जाएगा। प्रदेश के जो लॉसेज जो पावर डिपार्टमेंट सामान्यतः AT&C लॉसेज एक बड़ा विषय रहता है हर प्रदेश में, तो यहाँ भी कैसे बिजली की चोरी को रोका जाए, इन सब बातों पर भी विचार किया गया है।
0: वहीं राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने झारखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप केंद्रीय योजनाओं में शिथिलता बरतने और DVC के साथ मिलकर बिजली वितरण सुधारने का आग्रह किया।
2: हमने माननीय मंत्री से एक ही आग्रह किया कि पैन इंडिया के लेवल पर बनी योजनाएं भू राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, यहां के स्थानीय निवासियों की जरूरतों को देखते हुए कोई एक टीम आकर एक ज्वाइंट सर्वे करके इस स्टेट की जरूरतें और प्रायोरिटीज को अगर तय करके लेकर जाती है तो निश्चित रूप से झारखंड को भी हम लोग प्रगति के पथ पर बेहतर ले जा पाएंगे।
0: राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रामगढ़ प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सखी मंडलों और महिला समूहों के बीच 38 लाख रुपए के चेक वितरित किए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने JSLPS की महिलाओं के कार्यों की सराहना की और राज्य की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी को रेखांकित किया।
3: JSLPS की बहनों को भी कहना चाहूंगी कि आप लोगों के प्रयास से एक योजनाएं सरकार की सफल हो रही है। आप लोग बिरसा हरित योजना से जुड़े, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन था कि हमारी बहनें स्वावलंबी हो और सरकार की जो अलग अलग योजनाएं चल रही है उसको जोड़ करके इस तरह के काम किए जाए जिससे आपकी आजीविका भी सुनिश्चित हो।
0: भाकपा माले ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट न देने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में माले नेताओं ने कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया था। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में 30 जून से शुरू हो रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी जिला निर्वाचन और जनसंपर्क पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने भ्रामक और फर्जी खबरों पर चिंता जताते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी सूचनाओं का तथ्यों के साथ तुरंत खंडन करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने बताया कि SIR के सुचारू संचालन के लिए आज से कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित अन्य अधिकारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण भी शुरू हो गया है।
4: ट्रेनिंग प्रोग्राम कमीशन के हिसाब से 20 तारीख को DO डिप्टी इलेक्शन ऑफिसर ERO AIRO करोगे, फिर उसके बाद अपने फील्ड ऑडिटर उसके बाद वो ट्रेनिंग अपने प्रक्रिया में शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग में एनुमरेशन फेज का संबंधित कितना भी बात है एनुमरेशन पीरियड का है उसी का संबंधित ट्रेनिंग होगी। उसमें ट्रेनिंग दोनों वो प्रक्रिया का भी इंस्ट्रक्शन का भी होगा, फिर उसके बाद टेक्निकल डिटेल भी होगा, फिर फॉर्म भरवाने के लिए एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए क्या डिटेल चाहिए कैसा वो डिटेल ट्रेनिंग होगा।
0: रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज SIR कार्यक्रम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बताया कि बैठक में SIR की बारीकियों पर चर्चा की गई। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत आज सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर व्याख्यान और वेबिनार का आयोजन किया गया। सीआईपीईटी रांची के निदेशक अवनीत कुमार जोशी ने एकल उपयोग प्लास्टिक के दुष्प्रभावों और पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर प्रकाश

0: डाला। कार्यक्रम में अधिकारियों ने स्वच्छ और हरित भविष्य का संकल्प लिया। रांची के निवारणपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांतीय कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच अब झारखंड एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी ATS करेगी। वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि आरोपियों के कुछ इंटरनेशनल लिंक मिले हैं।
1: घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए हम लोग सभी लगातार इसमें लगे हुए थे और फिर धीरे धीरे उन्हें मतदान करते हुए उन्हें कोडरमा के आगे एक गजंडी करके एक रेलवे स्टेशन है उसके पास से हमने उन्हें गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हमारे सामने आए, उसमें कुछ इंटरनेशनल लिंक्स भी हैं। इस कांड का फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो ATS के द्वारा किया जाएगा।
0: एम्स देवघर के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। ग्लोबल साइंटिस्ट इंडेक्स की यह रैंकिंग ओपन एलेक्स के वैश्विक शोध आंकड़ों पर आधारित है, जिसने चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में संस्थान का गौरव बढ़ाया है। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कल राज्य भर में आंशिक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है, जबकि पलामू और गढ़वा में मौसम गर्म और उमस भरा रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। रांची और बोकारो में भी आयोजित हुआ क्षेत्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने रांची में की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक। जनजातीय क्षेत्रों के 20,000 घरों में बिजली पहुंचाने की जताई प्रतिबद्धता। रामगढ़ में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने किया नए प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन। सखी मंडलों के बीच बांटे 38 लाख के चेक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने SIR को लेकर की समीक्षा बैठक। आज से चुनाव कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू। सोशल मीडिया की फर्जी खबरों पर रहेगी सख्त नजर। और देवघर एम्स की बड़ी उपलब्धि, संस्थान के कार्यकारी निदेशक समेत 9 डॉक्टरों को दुनिया के शीर्ष 5% वैज्ञानिकों की वैश्विक सूची में मिला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे लातेहार संवाददाता।
1: लातेहार जिला पुलिस ने नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद JJMP के इनामी सब जोनल कमांडर एवं एक एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खरवार पर झारखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने कहा कि
2: लातेहार जिला में नक्सल विरोधी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी संदर्भ में ये सूचना पुलिस को मिली कि JJMP के सब जोनल कमांडर शिवा सिंह खेरवार लातेहार थाना क्षेत्र में भ्रमणशील है। इसमें त्वरित एक टीम का गठन

0: किया गया और टीम के द्वारा बड़ी ही कुशलता से शिवा सिंह की गिरफ्तारी की गई। जो शिवा सिंह खेरवार है, इसके विरुद्ध कुल 24 कांड दर्ज हैं, जो मुख्य रूप से लातेहार जिला, चतरा जिला और रांची जिला में है। ये सब जोनल कमांडर के रूप में कार्यरत था और इसके विरुद्ध सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था।
1: विश्व पर्यावरण दिवस पर वन प्रमंडल पदाधिकारी परवेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष पूरे जिले में 15,25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जंगल का बचाव जरूरी है।
2: लोगों से मेरा यही संदेश रहेगा, जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसका कम से कम उपयोग करें, उसका सदुपयोग करें, दूसरा उसको रीयूज करें, तीसरा कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम रिसाइकिल कर सकते तो रिसाइकिल करें, ये 3 प्रिंसिपल अडॉप्ट करें।
1: इस मौके पर लातेहार जिले के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
3: विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी जनता से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, फिर प्लास्टिक का यूज़ कम करें, सोलर पावर का ज़्यादा यूज़ करें और वाटर कंजर्वेशन को लेकर के जो पनसोखा या जो भी घरों के बगल में लगाते हैं जिससे कि वाटर लेवल मेंटेन रहे, ये 4 चीज मेंटेन करते हैं तो ये विश्व पर्यावरण दिवस का जो है गोल जो है हम लोग अचीव कर सकते हैं।
1: लातेहार में 3 दिवसीय पलामू क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार जिला के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस कर्मी शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस को आधुनिक तकनीक से सशक्त एवं अनुसंधान कार्यों में दक्ष बनाना है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पलामू प्रक्षेत्र के DIG कौशल किशोर ने कहा कि
4: देखिए, लातेहार थाना अंतर्गत दुर्वा क्षेत्र में आज एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मेरे साथ पुलिस अधीक्षक लातेहार और समस्त स्थानीय पुलिस पदाधिकारीगण मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा ऐसा निर्देश दिया गया है कि जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में, शहरों में, सभी स्थानों पर जाएं और जाकर लोगों के साथ सीधे संवाद करें और उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी जो अपेक्षाएँ हैं, उनको समझने का प्रयास करें।
1: लातेहार जिला प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को नशा पान से दूर रखना है। यह कार्यक्रम 15 जून से 25 जून तक चलाया जाएगा। जागरूकता रथ रवाना करने के बाद उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि
3: 15 से लेकर 25 तारीख तक गांव में विशेष कर जाकर जो नशा लिप्त लोग हैं उन लोगों को हम लोग पशु करेंगे, उन लोगों को हम लोग समझाएंगे चार प्रसार के माध्यम से।
1: संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
5: अभी आप सुन रहे थे लातेहार जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी जमशेदपुर। प्रस्तुत है बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम।

ये था बंगला प्रेमी श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक बंगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी।

स्वास्थ्य पत्रिका कल्याणी में आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त जयश्री। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जोहार। बहनों, गर्भावस्था हर स्त्री के लिए बेहद ही रोमांचक अनुभव होता है और ये अनुभव बेहतरीन हो सकता है अगर हम इस अवस्था में कुछ बेहतर काम करें, जैसे कि योग करना। आप सब सोच रही होंगी कि योग करना कैसे सही रहेगा, तो पहली बात तो हमें डॉक्टर की सलाह से ही कुछ भी योग करना चाहिए या क्या करना है नहीं करना है। अगर बेड रेस्ट है तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर गर्भावस्था में योग करना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और हाँ, योग करना माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। इसे प्रसव पूर्व योग कहा जाता है और ये न केवल शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है दोस्तों, बल्कि मानसिक तनाव को कम करके प्रसव की प्रक्रिया को भी आसान बनाने में मदद करता है। श्रोताओं, प्राणायाम और ध्यान से मानसिक शांति मिलती है जो इस दौरान होने वाले हार्मोनल बदलावों को संभालने में मदद करती है। योग से पीठ, कमर और पैरों में जो दर्द होता है ना, उसमें आराम मिलता है। आसन और सांस लेने की तकनीक से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है जो बच्चे के विकास के लिए अच्छा है। दोस्तों, पेल्विक एरिया, कमर का जो निचला हिस्सा होता है, वहां

0: मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ती है। और साथ ही थकान दूर कर गहरी और अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है योग। कुछ आसन हैं जो हमें गर्भावस्था के दौरान करने चाहिए, जो सुरक्षित और फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि मार्जरी आसन। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पीठ दर्द से राहत देता है। दोस्तों, बद्ध कोणासन जो है ये पेल्विक हिस्से को खोलता है और जांघों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, जो प्रसव में मददगार है। ताड़ासन ये शरीर का संतुलन सुधारता है और पैरों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। वीरभद्रासन पैरों को मजबूती देने और शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए अच्छा है। इसे दीवार के सहारा लेकर के भी किया जा सकता है। और शवासन बाएं करवट लेकर तकिए के सहारे आराम से करना, जिससे शरीर और दिमाग पूरी तरह शांत हो। और श्वसन और प्राणायाम जो है श्रोताओं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस गर्भावस्था के समय। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन शांत होता है और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी को नियंत्रित करने में भी मदद मिलती है। अनुलोम विलोम शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित रखता है। और गहरी सांस लेना प्रसव के दौरान होने वाले संकुचन को सहने में मदद करता है। योग शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अपने डॉक्टर से यानी गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि हर महिला की गर्भावस्था और मेडिकल स्थिति अलग होती है। लेकिन हाँ, कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां आज मैं भी आपसे साझा करती हूँ। ऐसे किसी भी आसन को मत कीजिए जिससे पेट दबे या खिंचावाए, जैसे कपालभाति, नौकासन या आगे झुकने वाले कठिन आसन बिल्कुल भी मत कीजिए। दूसरी और तीसरी तिमाही में पीठ के बल सीधे लेटने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रमुख रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ता है। और हाँ, कभी भी योगासन करने में शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें, शरीर की सुने। अगर किसी आसन में चक्कर आए, सांस फूले या असुविधा हो तो तुरंत रुक जाएं। विशेषज्ञ की देखरेख में करने से ये और बेहतर हो सकता है। और हाँ, योग के दौरान और बाद में पर्याप्त पानी पीजिए, अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखिए। गर्भावस्था का जो ये सुखद समय है, ये सुखद रहे, इसके लिए हम सब प्रयास कर सकती हैं। आप हम जब मिलकर इसे करते हैं और अपने गर्भावस्था को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक शांति के साथ सारी उलझनों को दूर करने में मदद मिलती है। और कई बार जब हमें प्रसव के समय या फिर किसी अन्य बीमारी में रक्त की जरूरत होती है, तो हम रक्तदाता ढूंढते हैं या फिर ब्लड बैंक से रक्त ढूंढते हैं। लेकिन ये रक्त आता कहाँ से है जब कोई व्यक्ति रक्तदान करता है? इसलिए जरूरी है दोस्तों कि हम सब भी रक्तदान करें, ताकि हम किसी की जिंदगी बचा सकें। तो रक्तदान है जरूरी कर्तव्य। इस विषय पर आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर निर्जला झा और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजेश कुमार।
1: श्रोताओं, रक्तदान कितना जरूरी है आज के दिनों में, आज बातें इसी विषय पर। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जमशेदपुर ब्लड बैंक की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर निर्जला झा। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: डॉक्टर साहिबा, रक्तदान क्यों जरूरी हो जाता है आज के दिनों में?
2: रक्तदान महादान है, वो सब लोग जानते हैं। रक्त देने से कभी शरीर में कभी कोई किसी भी चीज की कोई चीज की कमी नहीं होती। जो रक्त आप देते हैं वो हर 3 महीने में उसका बनना और बिगड़ना, ये साइकिल चलते रहता है। भले ही आप रक्त दे या न दे, ये साइकिल आपकी बॉडी में वो हर 3 महीना में जो आरबीसी सेल है हमारा वो डेड हो जाते हैं और न्यू सेल का फॉर्मेशन होते ही रहता है। इसीलिए कई लोगों का ये सोच है कि हम ब्लड देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, हमारे शरीर से इतना इतना ब्लड निकल जा रहा है। ये नहीं, ये ब्लड आपके आपके बॉडी से वेस्टेज ब्लड है जो आपके बॉडी से बाहर निकलता है और इसके बदले में 24 to 48 आवर में न्यू ब्लड बन जाता है। ब्लड तो बन जाता है बट कुछ चीज है जैसे कि आरबीसी सेल डब्ल्यूबीसी सेल है, उसको बनने में 90 डेज लगते हैं। इसीलिए हम लोग 3 महीना में बोलते हैं कि हर 3 महीना में अपने रक्त को दान कीजिए। इससे बॉडी हमारा फिट रहता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, हार्ट संबंधी कुछ चीज है जो नहीं होता है, और हार्ट और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो ब्लड प्रेशर भी होने की चांसेस नहीं रहती है, यानी कि आप कंप्लीट स्वस्थ रहते हैं। हो सकता है आपको शुगर होने की चांसेस भी कम हो, बट गारंटी नहीं, बट कोलेस्ट्रॉल और हार्ट संबंधी प्रॉब्लम मतलब ब्लड प्रेशर ये आपका कंट्रोल रहता है, इसलिए रक्तदान करना बहुत जरूरी है। हम लोग बाहर जाते हैं कहीं कैंप में, गांव वगैरह में जाते हैं या फिर शहर में, आजकल बहुत ही अवेयरनेस देखते हैं सब जगह रक्तदान के प्रति। तो रक्तदान एक महादान है, हम सभी से यही बोलेंगे कि सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और रक्तदान करें।
1: आज भी ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं इसमें पीछे है, आप महिलाओं को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहती हैं?
2: देखिए, महिलाएं इस चीज में पीछे हैं क्योंकि महिलाएं में कुछ चीज है, महिलाओं का इंटरनल एब्जॉर्प्शन जो है ब्लड का, हीमोग्लोबिन का, वो ज्यादा है, इसीलिए महिलाएं में हीमोग्लोबिन की संख्या थोड़ा कम रहती है। बट महिलाएं भी देती है, महिलाएं ऐसा नहीं है नहीं देती है, लेकिन महिलाओं में एक चीज प्रॉब्लम है कि जो है इंटरनल एब्जॉर्प्शन ब्लड का ज्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा कम रहता है हीमोग्लोबिन। फिर भी महिलाएं भी अगर मेंटेन करके चले, अगर 8 घंटा का नींद जरूरी है, खाने पीने में आयरन, मतलब आयरन रिच फूड जो है वो लेना बहुत जरूरी है, और सबसे मेन है कि टाइम टेबल को मेंटेन करके चले, महिलाएं भी में भी हीमोग्लोबिन ठीक रहेगी और वो भी ब्लड दे सकेंगी।
1: किस तरह के लोग हैं जिन्हें ब्लड नहीं देना चाहिए?
2: कुछ डिजीज है जिसमें कि ब्लड परमानेंट नहीं देने के लिए बोलते हैं हम लोग, जैसे कैंसर पेशेंट हो गया, एपिलेप्सिया पेशेंट हो गया, सिजोफ्रेनिया पेशेंट हो गया, जो है लेप्रोसी पेशेंट हो गया, ये सब पेशेंट जो है परमानेंट कभी, जैसे कि मेडिसिन चल रहा है ब्लड प्रेशर का, थायराइड का, शुगर का, ये सब पेशेंट कभी ब्लड नहीं दे सकते, मतलब इन पेशेंट को हम लोग कभी भी ब्लड देने के लिए नहीं बोलेंगे। हेपेटाइटिस वगैरह, हेपेटाइटिस सी भी, ये सब है, एचआईवी वगैरह है, उस पे ब्लड नहीं देना चाहिए और नहीं देने।
1: ब्लड लेने के पहले आप लोग किस तरह जांच करते हैं और क्या क्या देखते हैं कि कौन से लोग स्वस्थ हैं?
2: देखिए, ब्लड देने से पहले हम लोग हीमोग्लोबिन देखते हैं सबसे पहले कि ब्लड में आयरन है कि नहीं, और आयरन और प्रोटीन है कि नहीं, वो ब्लड देने में सक्षम है कि नहीं। उसके बाद ब्लड प्रेशर वगैरह भी देखा जाता है कि बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना है या बहुत ही लो ब्लड प्रेशर नहीं होना है, और भी कुछ हिस्ट्री है उनका, पास्ट हिस्ट्री या फिर प्रेजेंट हिस्ट्री, जो कभी कुछ कोई डिजीज हुआ था या फिर एट अ प्रेजेंट कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन है, ये सब चीज का हम लोग देखते हैं। उसके बाद ही हम लोग, जब अगर इस चीज में फिट निकलते हैं डोनर, तो हम लोग उसी डोनर को हम लोग ब्लड देते हैं। और ब्लड देने के बाद कई सारा डिजीज है जो ब्लड संबंधी डिजीज है, जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस, बीडीआरएल, बीडीएमपी, ये सब चीज है जो बहुत ही रिस्की डिजीज है ब्लड के लिए, वो सब चीज का हम लोग जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद हम लोग इस ब्लड को सप्लाई में डालते
1: हैं। एक संदेश लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान करें,
2: रक्तदान करें, ये शरीर के लिए भी सही है, और इसी माध्यम से आप किसी का हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा पुण्य है, इसीलिए इसको महादान बोलते हैं और गुप्त दान भी बोलते हैं। हम ये ब्लड आज दिए हैं, हमको खुद नहीं पता मेरा ब्लड ये कल किसको जाएगा, इसीलिए इस दान को हम गुप्त दान भी बोला गया है, इसीलिए रक्तदान करें, इससे बढ़ के दान कोई दान।
1: डॉक्टर साहब, आपने काफी उपयोगी जानकारियां दी रक्तदान के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता रक्तदान है जरूरी कर्तव्य विषय पर। भेंट वार्ताकार थी डॉक्टर निर्जला झा और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। और चलते चलते एक खूबसूरत गीत आप सबके लिए।

0: यहाँ।
1: हाँ
0: आपकी सीट तो आ गए।
1: हमें तो यहीं बैठाया उसने।
0: नहीं नहीं आप चलिए। और आप पत्नी कहाँ है?
1: वो तो है ही नहीं।
2: देखिए आप लोग यहाँ पर डिस्टर्ब कर, चलिए आप लोग उस तरफ जाके बातचीत कीजिए।
0: अच्छा अच्छा ठीक।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंगूर फिल्म में आशा भोसले की आवाज में गुलजार की लिखी शब्द रचना और इसे संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। जिंदगी के मजे लीजिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इसी दुआ और शुभकामनाओं के साथ अपनी रेडियो दोस्त जयश्री को दीजिए विदा। पुनः मिलने के वादे के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पत्रिका कल्याणी।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम।
1: हेलो डॉक्टर,
2: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए।
0: आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म इश्क विश्क का ये गीत, जिसे लिखा था समीर ने और संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने।
1: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

0: रक्त फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार थे डॉक्टर दीपक स्नेह, संगीत था नरेश शर्मा का।
1: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरी यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 बजे आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मन भावन कार्यक्रम से।

0: सिर्फ तुम। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाजें थी अलका याग्निक और कुमार सानू के, शब्द रचना समीर के, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दुश्मन का गीत, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया था उत्तम सिंह ने।
1: हेलो डॉक्टर,
2: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्य

0: कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म हम हो गए आपके से। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के, शब्द रचना समीर के हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

Mm-hmm.

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। समाचार संध्या आप सुनेंगे अब से कुछ ही पलों में हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र उड़ीसा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता

0: विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
4: रिमेन्स अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ स्ट्रगल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
5: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री

0: ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
1: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
0: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
2: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
3: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agreed to cease fire. And in sports, Ashmita Chaliha to face Park Ae-yeon in women's single semi-finals of Macau Open Badminton in China tomorrow. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said, India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
7: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
6: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, The PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry.
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी

मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक्सपेंडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. देयर पार्टिसिपेंट्स वर शिशिर सिन्हा इकोनॉमिक एनालिस्ट एंड दीक्षा सक्सेना आकाशवाणी कॉरेस्पॉन्डेंट. दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी. यू कैन लिसन टू इट ऑन आवर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044. Spotlight.

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म स्वीकार किया मैंने का ये गीत, जिसे लिखा था निदा फाजली ने, धुन बनाई थी उषा खन्ना ने।

दोस्ताना फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द रचना आनंद बख्शी के थे और उसे संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू की आवाज में फिल्म आओ प्यार करी का ये गीत, जिसे लिखा है श्याम राज ने और संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने।

प्यासा सावन फिल्म का गीत अभी आपने सुना कमलेश अवस्थी की आवाज में। शब्द रचना संतोष अवस्थी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। इसके तहत आज सुनिए पंडित निखिल बैनर्जी का सितार वादन, राग है चंद्रकौंस।

0: इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 MHz पर। इस समय रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल,